आप सबसे एक विनती करूंगा, यह ब्रिज की उपासना है कि आओ साधो हरि चर्चा कीजे, अधिक हो तो हमको दीजिए और कमती हो तो हमसे लीजिए, और पूरा हो तो छक छक पीजिए। ये ब्रिज की उपासना है। हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी या हमारे बीच विराजमान है। मैं ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ ना महाराज जी, क्योंकि मैं यहाँ मैं नहीं गाने आया हूँ, आप लोग भी मेरे साथ गाइए या ठाकुर को

प्रत्येक सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारो हिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: वाओ
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

अब चाहे लग जाए हथकड़ियां मैंने तेरी बांह पकड़ ली मन तुझ पे नियत धर ली।

0: फूटे या माथा
1: अब चाहे कांटे मिले या कलियां
0: अब चाहे लग जाए हथकड़ियां
1: अब चाहे घर छूटे या तकिया
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया अब चाहे

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ फोन नम्बर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभरको जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर ल्याक्स। 16 प्राकृतिक तत्वको संयोजनले बनेको यो ल्याक्सेटिभ ग्रान्युल्सले अब मेरो

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: రసావేల్ చుచ్చేపాకి
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: सौंदर्य कसलाई मन पर्दैन र संस्कार कसले भुल्न सक्छ र सौंदर्य र संस्कार जसले यहाँलाई यहाँको पहिचान गराउने छ।
0: सिल्वर पैलेस प्युखा कर्नर न्यू रोड नेपाली हस्तकलामा समर्पित सिल्वर पैलेस
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूँ।

0: पर गंगा बाई से परे ने मुखड़ा करके मने दिल को कितने देर और तसा होगा इब हो जाए को किधर गाने को श्री गणेश।
1: जरूर सेठ जी, पर मैं देख रही हूँ आज महफिल में मजाक का रंग छाया हुआ है। अगर इजाजत हो तो मैं भी एक हल्का सा मजाक करूँ।
0: अजी एक मजाक की क्या बात करो गंगा बाई, 1000 मजाक करो। दिल ये कुणको है, हमारी जान जिगर कुणको है, तीर पे तीर चलाओ थने डर कुणको है।
2: वाह सेठ जी, मुकर्र।
0: अजी मुकद्दर तो इनके हाथ में है।
1: लेकिन सेठ जी डरती हूँ, मजाक कभी कभी कड़वा होता है, कहीं बुरा न लग जाए।
0: के बात करो जी, थारी तो गाली भी फूल बनके लागे मने, फूल बनके।
2: वाह सेठ जी, वल्ला हाजिर जवाब हो तो आप जैसा
0: ठणकियो। हाँ तो गंगा भाई, हो जाए कुछ करारी करारी चीज। हाँ
1: तो लीजिए, मुलाहजा फरमाइए, मगर मेरे सर की कसम उठना जाइएगा महफिल से।
3: कयामत तक न उठेंगे जाने मन, वादा रहा।
1: और सेठ जी आप?
0: अजी हमारी क्या बात करो, थारी महफिल में तो देवता भी उतर आवे तो स्वर्ग की अप्सरा ने भूल जावे। एक बार नजरा मिलाकर मुस्कुरा दियो गंगा भाई तो सारी जिंदगी अठे ही लेटा रहूं।
1: तो वादा रहा?
0: अजी वादे की क्या बात करते हो, ये भी लेट जाता हूं नहीं।
1: तो दिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई।

0: I don't think he needs any introduction.
1: नहीं नहीं साहब, हम सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी तरफ से भी जानते हैं, खुद की तरफ से भी जानते हैं। बहुत कहीं बोलिएगा।
2: Hey, I want to meet you. Give me a telephone number.
3: Wrong number.
4: रोशनी, हम सब की रिक्वेस्ट है कि इस पार्टी की शुरुआत समीर साहब के एक प्यारे प्यारे गाने से हो जाए।
3: लिसन लिसन फोक्स, आप लोग तो मेरा गाना कई बार सुन चुके हैं, आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों से मैं कुछ सुन सकूं, तो प्लीज आप ही कुछ सुनाइए।
0: राइट, करेक्ट।
5: नहीं नहीं, आप ही सुनाइए ना।
3: मैं नहीं, आप, बल्कि आप सब मिलके सुनाइए।
1: हाँ यार, आज तो ही कुछ सुना दे।
5: मैं क्या सुनाऊंगी?
1: अपने दिल की आवाज। अरे यार वो ही।
3: अरे वाह,
1: अरे वाह,
3: आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। चलिए प्लीज गाइए ना।
5: आप कहते हैं तो जरूर, मगर एक शर्त है, आप सब लोगों को मेरा साथ देना होगा। मंजूर?
3: डन।

0: आप भेज दो अंदर। रोशनी, वो आ रहा है।
1: डैडी आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डैडी।
2: ओ यस, कम कम
0: कम इन प्लीज।
2: तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे।

0: Come, come.
1: Come in, please. तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। तो ये
2: ओ डैडी।

0: सय 4.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन लिँदै हुनुहुन्छ केही सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: दादाजी ने कहा, मेम साहब इस मुंडे नु लिफ्ट दे दो। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसके पास जो लल्लू था फट से बोल पड़ा, नहीं नहीं, ये लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेते, इनकी माताजी ने मना किया है।
2: रोशनी तू भी किस लल्लू का जिक्र कर बैठी यार, यहाँ के सिंगर का गाना सुनेगी तो दिन भर की बोरियत दूर हो जाएगी। हाय जालिम, क्या गाता है, क्या बजाता है यार।
1: अच्छा?
2: हाँ यार।
1: रोशनी जरा दिल थाम के गाना सुनना, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी।
2: यार रोशनी, मुझे तो डर है कहीं तुम उसे अपना दिल ना दे बैठो।
1: ओ हो हो हो हो, मैंने तो इतना हसीन आदमी नहीं देखा, कमबख्त इस कदर दिल और दिमाग पर छा गया है कि बस।
3: बस बस बस, बहुत तारीफ हो चुकी, ऐसा लगता है तुझे उससे इश्क हो गया है।
1: अरे मैं तो उसकी दीवानी हूँ, मगर वो पत्थर दिल कभी किसी की तरफ आंख भर के भी नहीं देखता।
3: आज तुम्हारे उस पत्थर दिल को हम भी देखेंगे।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

नाम की कोई वस्तु, भगवान कहते हैं मैंने ना सुख बनाया है और ना ही संसार में दुख बनाया है, लेकिन ये दुख कहाँ से आ गया है उसका एक विशेष कारण है।

इधर से आ गया। दुख इस बात का हो गया कि उसके पास इतना क्यों है। ये जलन जो है ये चैन से जीने नहीं देती। अगर यही बात सोच लें कि उसके कर्मों में इतना है, प्रभु अगर उसको इतना दिया है तो उसे और दे देना। अगर ये बात जीवन में आ जाए तो दुख भी सुख में बदल जाता है। तो संतों की वाणी है।

जय साहे। अगर वो हमारे किए हुए पापों की तरफ देखते तो जीवन में कभी उद्धार नहीं होता। राम जी माता समान हैं,

जब माँ आती है वो किसी का इंतजार नहीं करती, चाहे जैसे भी वो किसी गंदी नाली में गिरा हो, झट से अपनी कीमती साड़ी का विचार न करते हुए उसे उठा के अपने गले से लगा लेती है। ऐसा श्री राम जी का महत्व है तो उसी नाम जी का ही हमने उच्चारण करना है।

श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना।

यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे।

वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरों को देखकर डर रहे हैं। घर श्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर

श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं से दुःसह दावाग्नि आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। उधर पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया।

प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौट आए लौटते नहीं, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हांकिए, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस तरह इस रथ को हांकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया।

सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हाराम हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं।

सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं।

0: फल मूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया,
1: हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें।
0: श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।
3: जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए

श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। राम जी ने देखकर कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बिचकुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे।

0: फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा,
1: महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, जिसके सुंदर मणियों के रचे चौवारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम।

जहां आने को वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं, वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में भी देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता? सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया।

0: वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया।
1: श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे, भोग

किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, ऐसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।

ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम।